0: जा, बस मेरी दीदा बेटा नहीं सकते जा, बस मेरी दीदा भाई ता नहीं।
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.